0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar. You are listening to Radio Amar Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: Nabi Sardar Azamaa.
4: मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला. मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला. फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना. उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की. जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया. मैं सब बहन भाइयों को

0: तो ये पदसापर सीधे तसा उपस्थित थी
1: जनाती से तारखाना पसापर के हम एस्मा वॉशिंग पाउडर उपस्थिति
0: एस्मा वॉशिंग पाउडर मड़ाई मिल जी मोह कोर्ता नेशनल और मल्टी नेशनल कपनेवल वॉशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की दस रंगे सरा प्रोबरे
1: बिल्कुल तारखाना दा गिले वे हर वक्त मोता हाँ कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता एस्मा वॉशिंग पाउडर उड़ल से रिखड़े दी और स्टोल कुर वाला नफाशोल दी
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरों वो दर तो ये या कि पर एश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे कहना एश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी कि कपड़े सब यूजुअली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात एश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाव मोता चेरता मिला बीजी
1: तारे खाना दाव तो दाव बने गल से अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शोए मार्किशे देश मां मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफे जहीर सेब सार उधर ते मिला बीजी।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ। आपका मेजबान आज अंसफ़र आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है। बिल्कुल जनाब, आपका मेजबान आरजी अंस अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है प्रोग्राम सेहत का पैगाम लेकर, जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। बिल्कुल खवातीन हजरात, अलशिफा दवाखाना एक ऐसा मुतबर नाम, एक ऐसा इदारा जहां पर हर किस्म बीमारी का देसी तरीके का इलाज से मुकम्मल सफाया किया जाता है। एक ऐसी बीमारी का जिसने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो उस बीमारी से, सो इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी का तसली बख्श इलाज किया जाता है अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शबाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। तो बिल्कुल खवातीन व हजरात, उम्मीद करता हूं आप तमाम सुनने वाले जहां भी होंगे, मेरे बहने हैं, मेरे भाई हैं, खैर वाफियत से होंगे। चूंकि अभी खाने का टाइम है सो आप खाना भी खा चुके होंगे या खाना खाते खाते आप हमारा शो भी साथ सुन रहे होते हैं। इसके अलावा जो मुसाफिर भाई हमें सुन रहे हैं, चाहे आप टांग से हैं, चाहे आप वजीरिस्तान से हैं, चाहे आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम आपका है और इस शो में बात होती है आपकी सेहत की। आप जो सेहत के हवाले से सवाल होते हैं उसके बारे में हम बात ये करते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों के हकीम साहब से कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, सो हम जो सवाल सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं फिर हम एक ऐसा मखसूस शो उसके ऊपर रखते हैं जिसमें उसी बीमारी के बारे में बात की जाए। तो बिल्कुल खवातीन हजरात, एक अमूमन मसला जो बहुत ज्यादा पाया जाता है आजकल, बच्चों को भी है, नौजवानों को भी है, बुजुर्गों को भी है, बहनों को भी है, भाइयों को भी है, यानी कि हर किसी को यह मसला दरपेश है, वो है सर का दर्द। देखिए जी, सर का दर्द एक ऐसी चीज है, जब आप पूरे दिन अपने काम में बिजी रहते हैं, चाहे वो बहनें हैं अपने घर का काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, झाड़ू लगाती हैं, कभी धूप में होती हैं, कभी छांव में होती हैं, जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, यानी कि जब हम रात को सोने लगते हैं या हम आराम से बैठते हैं, तो अक्सर हमारा सर दर्द करने लग जाता है और उसका जो शॉर्टकट मारा जाता है वो चाय होती है। अक्सर ऐसा ही होता है हमारे घरों में कि जब भी किसी को सर के दर्द की शिकायत होती है तो वो फौरन ही जो है ना चाय का कप पी लेता है। तो बिल्कुल खवातीन हजरात, आज हम सर दर्द के बारे में बात करेंगे। सर दर्द की फिर और बहुत सारी अकसाम है। एक आधे सर का दर्द होता है जिसको हम माइग्रेन कहते हैं। सर दर्द की वजह से आंखों में दर्द होना, आपके पूरे जिस्म में दर्द होना, आप यानी कि अगर आप स्कूल पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, आपको उस चीज की तरफ दिमाग ना जाना, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका जो सर है आपको ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन जो है वो सर में चल रही है, ऐसा लगता है, इस किस्म का शदीद दर्द होता है। तो आज इस दर्द के बारे में हकीम साहब से पूछेंगे कि जो सर का दर्द है इसके असल में वजूहत क्या है और इसका तरीका इलाज क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है। हम ऐसे ही अपनी

0: चीज जब होती है तो पता चलता है कि इसमें बाज दफा ये भी होता है कि एक जिसे हम कह लें टेंशन हेडिक्स ये भी सर के एक उसके दर्द में ही है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है ना। अब उसमें से उसकी किस्म कह लें, अब बाज दफा वो सर के गिर पट्टी बांध लेते हैं बड़ी टाइट किस्म की और कुछ कोई मालिशें कर रहा है, कोई से दबा रहा है कि यार ये चीज हो, लेकिन असल में उसकी वजूहात देखें कि असल में वजह है क्या, मुस्तनद मौली से किसी से मशवरा करें, उसका प्रॉपर हल करें। सर का दर्द है, नॉर्मली है, कॉमन है, आम है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर्द हवा लगी तब भी हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा शोर गोल हुआ तब भी हो सकता है।
1: हाँ जी,
0: लेकिन देखना यह है कि उसकी उसकी एक प्रॉपर उसका एक सोल्यूशन निकले,
1: ठीक है,
0: आरजी ना हो, मुस्तकिल हो, फिर आप अपना जहनी दबाव जो है कम से कम लें। सोच फिक्रे हर शख्स के साथ है,
1: ऐसी बात
0: लेकिन
1: है।
0: आप उसको अपने पे सवार ना करें, जब आप सवार करेंगे वो आपके सर दर्द के तौर पे सामने आ जाएगा,
1: जाहिर सी बात है।
0: फिर आप मुसलसल काम कर रहे हैं बैठ के, उस चीज को भी आप थोड़ा सा एक साइड पे करें, थोड़ा सा अगर बिलफर्ज है कई हमारे टेलर नजर आते हैं, दर्जी हैं,
1: हाँ जी,
0: तो वो कोशिश करते हैं कि यार हम जो है मुसलसल बैठे हैं तो वो चार चार पांच पांच घंटे बैठे जाते हैं, तो
1: जाहिर सी बात
0: मशीन चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, वहीं गप्पे मार रहे हैं, वहीं चाय चल रही है, उसमें भी हो। बेहतर तो यह है कि अगर वो बीच में कोई 10-15 मिनट के लिए उठ के जरा थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं तो ये चीज उन पे काफी उनकी बॉडी पे जो है असरअंदाज होती है। मुसलसल काम जो है ये भी सर दर्द का बायस बन जाता है। फिर उसके बाद आती है कि हमारे बैठने का अंदाज, बाज दफा हम अपने जिस्म को मरोड़ तरोड़ के बैठ जाते हैं, उस पे भी हमारे असाब पे हमारे पट्ठों पे दबाव आता है, खून जो सर्कुलेट कर रहा है उसकी सर्कुलेशन में भी फर्क आता है, दबाव से वो आगे जाता है, तो फिर वो भी सिर दर्द का बाइस बन सकता है। फिर नींद की कमी तो है ही है, वो तो हमारी रूटीन बनेगी, हमने लेट नाइट सोना होता है वो भी वजह है। फिर इसके साथ साथ थकन,
1: ये
0: काम में हम इतने रहे कि हमने अपने वजूद को हद से ज्यादा थका लिया,
1: बिल्कुल ऐसी बात है,
0: ये चीज भी जो है वो भी असरअंदाज होती है। और आगे चले तो इसी वजह से ही बाज दफा माइग्रेन का मसला बन जाता है, दर्द शक्ति का या सर का दर्द है। अब उसमें भी देखना है कि उसमें और मुकम्मल सर के दर्द में क्या वजूहत है, क्या उसमें हम किस तरह कंपेयर करेंगे,
1: ऐसी बात।
0: इसीलिए मुआलिज से मशवरा जरूरी होता है, हालांकि सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स से बंदा पहचान सकता है,
1: क्योंकि
0: वो थोड़ा सा जो माइग्रेन है या आम दर्द सर का दर्द है ये आम दर्द से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है,
1: ऐसी बात है, बिल्कुल।
0: उनमें एक कहने के वॉमिटिंग की सी कैफियत होगी, मछली की कहने कैफियत मालूम होगी, रोशनी से वो दूर भागेगा, वो कहेगा यार मैं थोड़ा मुझे अंधेरे जगह पे मुझे करें, कमरे में अंधेरा
1: पर्दे
0: करें, मैं थोड़ा सा अगर वो इर्द गिर्द लोग हैं तो वो उससे थोड़ा सा साइड मारेगा,
1: ऐसी बात है,
0: वो सुकून चाहेगा, शोर से भागेगा दूर। ये माइग्रेन के उसकी जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स हैं,
1: हाँ जी ऐसी बात,
0: वहां से जाके। और दूसरा फिर ये है कि जरा कोई काम करेगा तो अपने जिस्म में दर्द महसूस करेगा, और बाज दफा तो उसे ये जो बू वगैरह या स्मेल कहने इससे भी वो एलर्जिक होता है, वो कहता है मैं इससे दूर हूं,
1: चाहे वो अच्छी हो,
0: चाहे अच्छी है या बुरी है, बुरी से तो खैर दूर होनी, लेकिन अच्छी भी जो है
1: वो भी सर में दर्द,
0: वो भी उसके लिए तकलीफ देगी, वो कहेगा मेरे सर में दर्द शुरू होना शुरू हो गया। और इसीलिए जो है वो थोड़ा सा वाइट करेगा,
1: ऐसी बात है,
0: आंखों के गिर्द बाजू का तारे से झिलमिल झिलमिल से या अंधेरा सा आना,
1: ऐसी बात है,
0: ये चीजें हैं। तो उस पे फिर जो मुआलिज है वो उसको कंपेयर करता है जब उसके सिम्टम या उसकी केस हिस्ट्री लेता है कि ये आधे सर का दर्द है, इस सिम्टम्स के मुताबिक फिर उसका इलाज है। और इसकी वजह से बाज दफा ये होता है कि हम क्योंकि नजर हम मुसलसल अपनी इस्तेमाल करते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: बाज औकात हम उसे प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं करते, तो नजर में कमजोरी, जिस तरह पहले वक्तों में लोग सुरमा डालते थे,
1: बिल्कुल
0: माएं खुद ही डाल देती थी बच्चों को, वो बच्चों को बचपन से आदत हो जाती थी, बड़े पन तक वो आंखों में सुरमा लगाते रहते, अब भी ऐसे बुजुर्ग हैं کہ جو ابھی بھی سرمائش

Ibrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome. Very warm welcome to all the student listeners of Radio Pegham 97.4 Paharpur, Global FM 91, Dera Ismail Khan and Radio Aman 88.4 Dank. Jinaab teen radio station aur ek awaaz aur ye awaaz hai Kesan Natural Pakistan ki awaaz. Ye awaaz hai khoobsurti ki, ye awaaz hai sehat ki aur ye awaaz hai shifa ki. जनाब हर रोज की तरह आज भी आपकी समातों की नजर बिल्कुल लाइव इन लाइव भाई एक वक्त तीनों रेडियो स्टेशन, तीन बड़े शहर, तीन बड़े अजला, डेरा जांक और पहाड़पुर एक साथ हैं हमारे साथ केसन नेचुरल पाकिस्तान के इस प्रोग्राम के जिसका नाम है केसन टी टाइम शो. जनाब उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त चाय का कप या तो आप नोश कर चुके होंगे या फिर नोश करने वाले हैं या फिर चाय का एक कप बिल्कुल जी आपके सामने आ चुका है. और ये मजा, ये वक्त जो होता है चाय के साथ ही मजा करता है क्योंकि हर वक्त का कोई ना कोई खाना पीना होता है. जैसे सुबह का वक्त है, उठते हैं तो जनाब चाय और नाश्ता नोश फरमाएंगे. लेकिन आप डेढ़ दो बजे का टाइम होगा तो लंच नोश फरमाएंगे और ये वक्त होगा तो ये चाय का वक्त है, टी टाइम, आप चाय नोश फरमाएंगे. और जनाब जब शाम के बाद का वक्त होगा तो आप रात का खाना नोश फरमाएंगे. तो जनाब ये वो रूटीन होती है आपकी जिंदगी की कि जो आपको आपकी जिंदगी का पहिया चला रही होती है. इस रूटीन से कि इन चीजों को जब आप अपने डेली रूटीन के अंदर रखते हैं तो आपकी जिंदगी पुरसकून रहती है, आपका खाना वक्त के ऊपर आपको मयसर आता है तो आपकी सेहत भी बनती है. और जब सेहत होती है तो जनाब जिंदगी तभी तेजी के साथ आगे बढ़ती है जब आप सेहतमंद होते हैं. क्योंकि जनाब सेहत से बढ़कर कोई और चीज नहीं है, सेहत ही इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत है. तो जनाब हमेशा अल्लाह ताला का ढेर सारा शुक्र अदा किया करें, हमेशा ढेर सारा शुक्र अदा किया करें. क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और जब शैतान को इबलीस को कहा कि इंसान का सजदा करो, ये बहुत अजीम मैंने मखलूक बनाई है, तो शैतान ने कहा था नहीं मैं तो इसे सजदा नहीं करूंगा. यानी कि उसके अंदर क्या आया था, कंपैरिजन आया था, मवाजना आया था कि मैं आग से बना हुआ, ठीक है जनाब, और ये मिट्टी से बना हुआ. यानी कि सबसे पहला जो गुनाह हुआ वो मवाजना करने का था, उसने मवाजना किया था, उसने इनकार बाद में किया. उसके जहन के अंदर जो पहली चीज आई थी वो कंपैरिजन आया था कि यार ये अल्लाह ताला मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे किस मखलूक का सजदा करने को कह रहे हैं. वो जो मिट्टी से बनी खनखनाती मिट्टी से बना हुआ, हमने आपको वाकया सुनाया था जब इंसान को अल्लाह ताला ने बना दिया था तो वो कुछ अरसे के लिए ऐसे ताबूत की सूरत में पड़ा था, अंदर से बिल्कुल खोखला, ये जो आंते हैं ये मैदा है, ये गुर्दे है, कुछ भी नहीं था. तो अल्लाह ताला ने एक फिजिकल अपीयरेंस बना के रखी थी. तो शैतान इंसान के मुंह से दाखिल होता था और दूसरी तरफ से निकल जाता था और कहता था क्या ही मखलूक बनाई है अल्लाह ने, ये तो बड़ा आसान है, मैं तो इसके आगे पीछे से अंदर से होकर आऊंगा और इसे गुमराह करूंगा. और जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि दफा हो जाओ, जन्नत से निकल जाओ, तो मेरे बात को नहीं मान रहे हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम्हारा रब हूँ, तो तुम यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हारा कोई हक नहीं है जन्नत में रहने का. तो शैतान ने क्या कहा था, शैतान ने ये नहीं कहा था मैं इसे रोजे नहीं रखने दूंगा, शैतान ने ये नहीं कहा था कि मैं इनको नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, शैतान ने ये नहीं कहा था कि मैं इनसे झूठ बुलवाऊंगा, शैतान ने ये नहीं कहा था कि मैं इनसे धोखाबाजी करवाऊंगा. शैतान की जो पहला थ्रेट था जात को, अल्लाह ताला की जात को जो उसने किया था, उसने कहा मुझे तो निकाल रहे हो जन्नत से, लेकिन देखना मैं करता क्या हूँ. अब दुश्मनी तो पल गई, अल्लाह ताला से दुश्मनी तो उसने मोल ली, तो कहता है क्या करूंगा. दुश्मन अक्सर जो है आपको धमकी भी देता है ना, जब दुश्मनी पर उतर आए तो कहते तू लंग की दिखावे, मैं तो कुछ ऐसा हूँ जनाब. तो शैतान ने क्या कहा था, शैतान ने कहा था कि देखना आप जो मखलूक पैदा कर रहे हो ना, इसमें सबसे ज्यादा लोग नाफरमान ना शुक्रे होंगे. ये नहीं कहा था कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं कहा था कि रोजे नहीं रखेंगे, ये नहीं कहा था कि कुरान नहीं पढ़ने का, नहीं, मेरे जो फोकस होगा ना वो में ये होगा कि मैं ना शुक्रा बनाऊंगा लोगों को. तो भाई देखिए आज पूरा दिन गुजर गया, चार बज रहे हैं सुबह से लेकर अब तक, क्या आपने एक दफा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है किसी भी लिहाज से, अपनी सेहत के हवाले से, अपनी नौकरी के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से. अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी जो है बगैर ऐब के, आपको औलाद दी, आपको बीवी जैसी सुकून देने वाली बीवी अता की, क्या किसी भी हवाले से आपने आज के दिन में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो देखिए शैतान तो कामयाब है, शैतान तो आज भी कामयाब है कि वो हमें शुक्र नहीं करने देता.
ٹھیک ہے جناب. اور وہ جو پہلی پہلی بات اللہ تعالیٰ کو اس نے کہی تھی نا, یہی کہا تھا کہ میں نہ شکرا بناؤں گا ان کو, نہ شکرے ہوں گے یہ, نہ شکرے. اور نہ شکری اتنی بری چیز ہے کہ جب آپ نہ شکری کرتے ہیں تو آپ کے پاس موجود چیزیں بھی چلی جاتی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا 30,000-50,000 مہینے کے کما رہے ہیں, اور اچانک سے آپ کے دل کے اندر نہ شکری آ جائے, وہ رزق بھی آپ سے چلا جاتا ہے. نہ شکری اتنی بری عادت ہے, اتنا برا عمل ہے کہ اس سے لوگ اپنی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں, لیکن شیطان کی اس چال کو نہیں سمجھتے کہ یہ تو شیطان کی چال ہے بھائی, ہے جناب. نہ شکری کرنا تو اللہ تعالیٰ کی ہر روز شکر گزار بننا, تھینکس ٹو گاڈ بولنا یار, یہ بہت بڑی عادت ہے. اور جو انسان بھی صحت مند رہنا چاہتا ہے, دولت مند رہنا چاہتا ہے, ہاں جی پیسے والا رہنا چاہتا ہے, ہر روز اپنے رب کی تعریف کرے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی معاملے کو فرمایا ہے نا کہ اور تم شکر ادا کرو گے تو تمہارا رب تمہیں زیادہ دے گا, اور اگر نہیں کرو گے تو تم کر کے آ سکتے ہو, ہے جناب. اگر نہ شکری کرو گے تو ہم اللہ کا کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پروردگار ہے, دونوں جہاں کا مالک ہے, نہ دے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس آپشن کیا موجود ہے؟ ہاں جی شکر گزاری کا آپشن ہے. مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شہوان, اور اس وقت آپ ڈیر اسمیل خان ٹانک اور پہاڑ پور میں کیسن کا پروگرام سن رہے ہیں. کیسن نیچرل پاکستان, وہ کمپنی جس نے ٹھیکہ لیا ہے جناب. کون سا ٹھیکہ لیا ہے؟ ہاں جناب, ہم کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی نے ہی ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں کو ڈھیر سارا پیارا بنانے کا. اور بھائی شرمانے ورمانے کی بات نہیں ہے, بالکل بھی مت شرمایا گرے, کیونکہ پیارا لگنا تو آپ سب کا حق ہے.

नुकसानदेह होती है और बहुत ज्यादा ठंडी चाय भी नुकसानदेह होती है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक औरत को देखा और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने मेरा वो एक्सपीरियंस कभी हुआ ही नहीं कि हम बैठे थे तो चाय का कप जैसे आया तो उसने कहा बर्फ है घर में। हम भी मेहमान थे वो भी मेहमान थी तो घर वाले ने कहा जी बिल्कुल है, कहते थोड़ी सी बर्फ तो ले। तो अब इनकी मैं हैरान हो गया, ये तो सुना था कि लोग जो है चाय के अंदर मूली डिबोकर खाते हैं, ये तो हमने मिस्टर जेदी को देखा था ड्रामों में कि चाय के अंदर वो मूली डिबोकर खाते थे, लेकिन पहली दफा देखा कि चाय के अंदर कोई बर्फ भी डालता है भाई। हाँ जी ना, अब चाय के अंदर बर्फ का उसने थोड़ा सा टुकड़ा डाला तो मैंने कहा आंटी ये क्यों, तो कहते बेटा इससे चाय की जो तासीर गर्म होती है ना वो ठंडी हो जाती है। बिल्कुल, ये मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था, क्या आपके सामने भी कभी ऐसा हुआ तो जरूर बताइएगा, लेकिन ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा और मैं हैरान हो गया ये चीज देखकर कि लोग गर्म चाय के अंदर बर्फ भी डालते हैं।

0: जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, चाय खत्म हो गई मेरी और अभी आपके साथ खुल के बातें होंगी। केसन की बहुत सारी प्रोडक्ट जो है आप लोगों ने इस्तेमाल कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। और अगेन कहा है सोनिया, आप भी सुन रही हैं सोनिया वाला भी। आज फिर टांग वालों ने मेरा 2 किलो खून बढ़ा दिया, पता हो आपको है जी। आप जब मैं समझ, जब ये लफ्ज बोलूं तो समझ जाया करो कि भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें टांग की तरफ से आ रही है और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं टांग वालों का भाई, जो हमारा शिफाय दर्द इतनी बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी वेट कम फक्की को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं माशाल्लाह, हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप। और ये कल हमने एक स्टॉक भेजा था मंसूर जनरल स्टोर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं टांक वाले, उनको ये नई जो प्रोडक्ट हमारी आई है ताकत प्लस का, एक ऑर्डर हमने इनको भेजा कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट आ गई है आप इसे। कल के दिन में टांक के इतने लोग उसे लेने के लिए गए हैं कल के दिन में, ठीक है जनाब। आज उसने फिर से ऑर्डर रिपीट किया, यानी कि तीनों इलाकों के अंदर डेरा टांग और पाड़पुर के अंदर हमारी जो प्रोडक्ट हर जगह गई है, वहां पर पहला ऑर्डर जो रिपीट हुआ है ना वो टांग वालों का हुआ है। टांग वाले एड्स अब यार मजा आ गया, कसम से मजा आ गया नई प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि एक स्टॉक हमारा गया और एक दिन के अंदर आपने इतना खरीदा कि डिस्ट्रीब्यूटर ने सुबह सुबह हमें मैसेज कर दिया भाई और भिजवा दे, वो तो खत्म हो गया। तो भाई बहुत शुक्रिया टांग वालों, और आप लोग मेरे दिल के बहुत करीब आते जा रहे हो यार, बहुत
1: दिन खुशी से भरपूर
0: और मेरा खून हर रोज बढ़ा रहे हो कसम से।
1: केसन का ताकत प्लस,
0: तेरे वालों ने कहीं कहीं जो मेरा खून चलाया हुआ है तो टांग वाले उसकी भरपाई कर जी। जनाब ये हमारी प्रोडक्ट है ताकत प्लस, बहुत ही ताकतवर फार्मूला हमने बनाया अभी कमजोर लोगों के लिए, जिनको जिस्मानी कमजोरी है, आसाबी कमजोरी है, ठीक है जनाब, पट्ठों में दर्द रहता है, जिस्म के अंदर दर्द रहता है जनाब कमजोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से, ठीक है जनाब, या फिर दिखने में पतले सूखे से हैं जी, पीली पहलवान लगते हैं आप। अब 3 महीने जो भी बंदा हमारे इस फार्मूले को रेगुलर इस्तेमाल करेगा, अच्छा जी हम आज आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर आपकी कमजोरी किसी बीमारी की वजह से नहीं है, बहुत सारे लोगों के अंदर जो कमजोरी होती है ना वो इंटरनली मसला ये होता है कि उसके अंदर कोई बीमारी चल रही है, खवातीन के अंदर भी ऐसा होता है, मर्दों के अंदर भी ऐसा। अगर किसी बीमारी की वजह से वो कमजोरी है तो उसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर ऐसे ही गिजाइत की वजह से, यानी कि गैर मुतवाजन गिजा खाने की वजह से या प्रॉपर खुराक ना खाने की वजह से आपकी कमजोरी है, तो हम आपको 3 महीने का टाइम देते हैं। जिस तरह हमने आपको ऑयल के बारे में कहा हुआ है कि मनी बैक गारंटी है भाई, इस्तेमाल शुदी बोतलें हमारे पास ले आइए अगर आपके बाल लंबे ना हो घने ना हो, इसी तरीके से हर चीज की गारंटी है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारी, क्योंकि ये 3 महीने आप खाएंगे तो आपका ढेर सारा खर्चा भी होना है, ठीक है जनाब, और 3 महीने अगर गुजर जाए और आपको कोई रिजल्ट ना मिले तो आप बोलेंगे भाई पैसे तो खलील भाई खा गया हमारे ऐसा है ना, नहीं यार हम नहीं खाने वाले, खाने वाले होते तो आज हमारे पास 3-3, 4-4 गाड़ियां होती, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नेक नियती से आप लोगों के साथ बिजनेस करने वाले लोग हैं। तो भाई बेफिक्र रहे आप, जो भी ये पूरा कोर्स करेगा 3 माह का, मैं स्पेशली अपनी बहनों से मुखातिब हूँ जिन बिचारियों के रिश्ते

इस वजह से रुके होते हैं कि उनकी फिजिक नहीं होती कोई, ठीक है जी ना, फिजिकली जो है वो हेल्दी नहीं होती। तो आप 3 महीने रेगुलर इसको इस्तेमाल करें, ठीक है जनाब। अगर आपको फर्क ना लगे, आपका जिस्म के अंदर भराई ना हो, आपकी गाल ना भरे, आपका जिस्म ना भरे, आपका जितना भी खर्चा हुआ होगा इस ट्रीटमेंट के ऊपर हम आपको वो वापस करेंगे। ऐसा कभी सुना है आपने? हम करते हैं, हम जब से हमारी कंपनी बनी है ना, हम यही राग अलाप रहे हैं और कोई भी हमारे पास लेके नहीं आता। यकीन कीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमने हर चीज की मनी बैक गारंटी दी, हम ऑयल की मनी बैक गारंटी देते हैं, हम शिफाय दर्द का कहते हैं, दर्द से आराम ना है वापस कर जाए, हम फक्की का कहते हैं, हम हर चीज का कहते हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए, मेरे असिस्टेंट हैं तलाक किंग, शॉपर होते हैं, कभी आप उनसे पूछें कि भाई आपके पास रिटर्न आते हैं, कभी क्लेम आता है कोई, ठीक है ना, तो आपको बोलेगा कभी नहीं हुआ, कभी भी रेयर, कभी एक दो चांस आ जाए वो भी ब्रिकेज लीकेज की वजह से या कोई और वजह से, अदरवाइज हमारे पास क्लेम नहीं आते कंपनी के। हालांकि हम हर प्रोग्राम में कहते हैं भाई मनी बैक गारंटी है, जो भी प्रोडक्ट हमारे रिजल्ट ना दे आपके पैसे अमानत हैं जब तक आप शिफायाब नहीं होते।

0: जी जनाब, ये हमारी नई प्रोडक्ट आई है जनाब, और ताकत प्लस के नाम से, केसन ताकत इसका नाम है, केसन ताकत प्लस, ठीक है जनाब। और प्लस का मतलब क्या होता है, ताकत ही लिख सकते थे केसन ताकत फार्मूला, लेकिन प्लस का मतलब है कि ये ताकत से बढ़कर कुछ आप लोगों के लिए है। इसके अंदर जो जड़ी बूटियां शामिल हैं वो आपकी बहुत सारी बीमारियों का भी खात्मा करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा मैदे के मसाइल हैं उनको भी हल करेगा और आपको ताकत भी देगा। इसका आज मुझे कोई 3-4 कालें आई हैं, वो हमारा जो पहला बैच गया है उसके ऊपर लिखाई थोड़ी सी बारीक है, तो लोगों को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आ रहा, तो बार बार लोग कॉल करके पूछ रहे हैं किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके दो तरीके हैं इस्तेमाल के, ठीक है जनाब। अगर आपको ये खुराक, ये फार्मूला थोड़ा सा बोझ देता है, लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अगर आपको लेता है तो फिर आप इसे 2 टाइम इस्तेमाल करें, यानी कि सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले 1 चम्मच आधे गिलास के अंदर डालकर पी लें, और फिर रात को खाने के आधे घंटे बाद सोने से आधा घंटा कबल जो है आधे गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच डालें। एक तरीका यह है कमजोर मैदे वालों के लिए, जिनका हाजमा कमजोर है, लेकिन जो ये समझते हैं कि फिट है भाई, हैं जी 3-3 गिलास दूध के हम तो पी जाए, क्या है, तो फिर वो रात को सोते वक्त भी 1 गिलास के अंदर 2 चम्मच शामिल करके मिक्स करके हिलाकर आप इसे ले सकते हैं, या सुबह नाश्ते के वक्त काम पे जा रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट है। नाश्ते से कबल जो है 1 गिलास के अंदर 2 चम्मच ताकत प्लस फार्मूले के डालकर, ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इसके अंदर, किसी किस्म का कोई स्टेरॉइड इसके अंदर नहीं है, मुकम्मल तौर पर एक गिजाई आप लोगों को हमने पैकेज दिया है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं। स्पेशली हम बात करते हैं आपको जो फैट्स जो चाहिए होते हैं, जो आपके बॉडी को बनाते हैं, जो आपके जिस्म के ऊपर गोश्त लेकर आते हैं, ठीक है जनाब। अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनिशियली हमने इसका छोटा पैक लॉन्च किया है, ये इतने का नहीं होता, हम आपको 500 रुपए का दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इसका बड़ा पैक हम लॉन्च करेंगे ताकि 3 महीने के अंदर सिर्फ 1 या 2 लगे और वो मुकम्मल आप लोगों के पास एक ऑप्शन होगा, और उसमें कुछ कंसेशन जितनी हो सकेगी हम करेंगे। तो ताकत प्लस के लिए भाई जो जो लोग निकले हैं पिछले 2 दिन के अंदर, हैट्स ऑफ,
1: नई जिंदगी का शुरू।
0: जी जनाब, केसन की ताकत प्लस फार्मूला, इसको केसन का ताकतवर प्रोडक्ट बनाएंगे मिलके जनाब, और मार्केट का नंबर 1 प्रोडक्ट बनाएंगे इसको इंशाल्लाह। हमने अपनी तरफ से इसके अंदर वो सब कुछ ऐड कर दिया है जो आपको फायदा पहुंचा सकता है। अब आपने खरीदना है, इसको इस्तेमाल करना है, 500 रुपए का 1 जार मिलेगा आपको, 100 ग्राम इसके अंदर वजन है, ठीक है जनाब, 100 ग्राम के करीब इसका वजन होगा, और आपने 1 या 2 चम्मच डेली से इसको स्टार्ट करना है। बहुत ही अमेजिंग है, पहले दिन से ही आपको इसका असर जो है आपके बॉडी के अंदर नजर आएगा। सो जनाब, डेरा टांग और पाटपुर में तमाम खरीदने वाले जो ताकत प्लस को खरीद रहे हैं, केसन के ताकत सप्लीमेंट को खरीद रहे हैं, ताकत प्लस को खरीद रहे हैं, उनका बेहद शुक्रिया, और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ही सेहतमंद होंगे, और कमजोरी आपको आप खुद कहेंगे अलविदा, अलविदा कमजोरी जी, बिल्कुल। ये प्रोडक्ट आपके जिस्म के अंदर जान डालने वाली है, नई जान है कि
1: हर दिन जोश से भरपूर कमजोरी को जो करे दूर,
0: हाँ जी कमजोरी को जो करे दूर,
1: जिस्म में आए नई जान,
0: जिस्म में आए नई जान,
1: जान,
0: जान।

जी जनाब, डाक वालों के लिए खुशखबरी है कि कल आपको जो है एक हमारे आरजे हैं, बहुत ही अच्छे आरजे, आरजे अनस जो है वो कल केसन को रिप्रेजेंट करेंगे टांक में। ठीक है जनाब, तो टांक वाले जुमा हफ्ता और इतवार तीन दिन जो है वो हमारे उस भाई को सुन पाएंगे आपके सिर्फ टांक के एफएम से। ठीक है जी, बाकी जो दो एफएम है डेरा इस्माइल खान एंड जो पहाड़पुर है उसमें बदस्तूर बदस्तूर खलील दाबे शवान आपको सुनने को मिलेंगे। तो टांक वाले भाई, जिन लोगों को पश्तो सुनने में मजा आता है तो कल और मजा लीजिएगा, पश्तो वर्जन केसन का आप सुन पाएंगे और देखते हैं कि हमारे वो आरजी आपको कितना कन्वेंस करते हैं।

जनाब बता कैसे भरपूर जिंदगी अगर आप भी हासिल करना चाहते हैं तो भाई केसन नेचुरल पाकिस्तान को हाथ मिलेंगे, केसन का हाथ थामेंगे तो खूबसूरती भी बेपनाह मिलेगी और सेहत भी बेपनाह मिलेगी।

0: जी जनाब, केसर नेचुरल पाकिस्तान में हम अपने एक कॉलर को चाहे इस वक्त वेलकम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, पखैर रागले।
0: पखैर रागले जनाब, क्या कहते हैं, एक और लफ्ज मैंने पश्तो का सीखा हुआ है वैसे।
1: भाई
0: नहीं यार, एक मिनट में ठहर जाओ
1: और सुनाओ।
0: नहीं और सुनो, नहीं चलो ठीक है, बोलो अब याद आ जाएगा मुझे।
1: सही बराबर है खलील भाई।
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल जी ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, हम दुआ करते हैं, कल तुम्हारा प्रोग्राम हमने अटेंड नहीं किया, मजा नहीं आया।
0: क्यों, कहाँ करते हैं आप?
1: नंबर बिजी आई।
0: कहाँ पर, कहाँ अटैक, कहाँ? बीवी ने पानी भरने भेजा हुआ था?
1: नहीं नहीं, टांग पे नंबर बिल्कुल काम नहीं करता।
0: अच्छा, कल टांग वाले लोग कॉलिंग कर रहे थे। ये मास्टर फतीला साहब को पता है आपको आजकल होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? मैं तो उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ।
1: ओ तो ये वाला है ना, शेख उतार वाला है।
0: शेख उतार वाले किधर चले गए? एक शेख उतार से एक और बंदा भी कॉल करता था।
1: आप कहते हैं फतीला भाई, मास्टर भाई था सुन, स्पेशल कालो को खलील भाई था पर दे रहे।
0: डेरा मिस करे दी, मिस करे दी,
1: डेरा मिस कर करे।
0: हंसो हंसो मेरे पश्तो के ऊपर। अली भाई बात कर रहे हैं, नाम बताएंगे?
1: पश्तो बहुत मजा कर रहा है।
0: अच्छा जी, अली भाई है या सलीम है, मुझे ये बताएं, इन दोनों में से
1: कोई? अली
0: अली भाई, अली भाई, अली भाई, माशाल्लाह जी। वो मैं कह रहा हूँ बंदा
1: बुढ़ा,
0: अगर आप बुढ़ा से तो भाई, अब हम कह रहे हैं कि कोई बुढ़ा बुढ़ा नहीं रहेगा, केसन ताकत प्लस फॉर्मूले से
1: सारे जवान रहेंगे,
0: सारे जवान होंगे। और मैं आपको बताऊं, आप पता नहीं आप गए हैं या नहीं गए, हमने एक दिन ये स्टॉक भेजा ताकत प्लस का, दूसरे दिन आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने फिर मंगवा लिया कि भाई सारे टांग के बूढ़े जो है ना वो जवान होना चाहते हैं।
1: बिल्कुल
0: और पहले पता क्या उन्होंने क्या क्या के दो पैक जरबत खान के लिए भेजने हैं, उसे जवान होने का बड़ा शौक है।
1: बिल्कुल, जरबत खान अभी जवान हो गया।
0: जरबत खान को जाके पूछना भाई कितना ताकत प्लस तुमने खा लिया है किशन का, ये तो मुझे जवान लग रहे हो बिल्कुल। गड़ा गरा बूढ़ा के लोगों को बोलो कि बहुत जल्द आपके गरे का नाम इंशाल्लाह गरा जवान होने वाला है, क्योंकि किशन का ताकत प्लस फॉर्मूला आ गया।
1: एक दिन जवान होएगा, मैं इधर अपना खुद दुकान खोलूंगा ना।
0: हाँ जी,
1: तो मैं सबका सामान आपका प्रोडक्ट रखूंगा और किसी वाला को रखूंगा।
0: हाय हाय क्या बात है, यानी केसन को मशहूर करोगे अपने इलाके में। और ये यकीन करो, अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप अपने इलाके के लोगों को प्यारा बनाओगे, यकीन करो। आप दुकान का नाम रखना प्यारा लगने वाली, प्यारा बनाने वाली दुकान,
1: इंशाल्लाह प्यारा बिल्कुल। ये दुकान पर पहले नाम लिखेंगे,
0: लिखना है जी, क्या नाम है भाई? अली भाई प्यारा बनाने वाले हैं जी, बड़ा बड़ा ऊपर लिखो, नीचे सारे केसन के प्रोडक्ट, क्योंकि केसन के जितने प्रोडक्ट हैं जी, केसन के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे आपको खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है जी?
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: अली भाई बहुत शुक्रिया आपका।
1: अच्छा मतियुला भाई को स्पेशल दुआ सलाम।
0: अच्छा जी ठीक है,
1: और अब्दुल्हादी को और सलीम को, टिखेर को
0: और फैजान को भी,
1: और फैजान को भी, जो तुम्हारा प्रोग्राम सुनते हैं सबको मेरे तरफ से सलाम है।
0: ठीक हो गया अली भाई, बहुत शुक्रिया जनाब। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़। प्यारा लगना, हाँ जी, प्यारा बूढ़ा वाले
2: हक है,
0: सब अब जवान होने वाले हो, क्योंकि जनाब केसन का ये जो फार्मूला, ये गप की बात नहीं है, ये आप इसको लाइट मूड पे मत लीजिएगा, लाइट मूड पे भी मत लीजिएगा, ये वाकई इतना प्यारा हमने फार्मूला बनाया है कि आपके जिस्म की सारी सुस्ती को निकाल के फेंक देगा, आपको चुस्त तो चलाक बना देगा। और एक दफा तो आप भी बोलेंगे कि मुझे काम बताओ। वो क्या कहते थे जगूटा जी, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, है जी? ऐसी एनर्जी और ऐसा जोश लेके आएगा
2: हमारा
0: ये प्रोडक्ट जो ताकत प्लस हमने बनाया आप लोगों के लिए। कॉलर हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो हेलो, चाचा चाचा फतेह खान, चाचा क्यों हाल है? ठीक ठाक
3: चाचा, ठीक ठाक है, अल्लाह की मेहरबानी है। मैं तो सब तू अच्छा है, मैं तो अला सीरा पीओ, ये तो हर कंपनी की शायद ठीक है, अला सीरा तो भैया किसी पी के तो ठीक हो गया, आटा घटा हो गया।
0: हाँ जी अच्छा, तू साथ में सिर बस हाजमे अला सीरा पींदे वे तुसा
3: साथ दुनिया हुआ नहीं।
0: अच्छा जी, बस ये तो
3: मैंने नहीं किया थी बात, राजा गफूर रिस्क करके बैठे हैं 5000 के बीच,
0: वो आ जाए कि भाई 10 किलोमीटर है टोटल, ठीक है जी। चाचा अगर
3: टाइम लगा तो चक्कर बारिश, सारे को कुट के
0: बारिश तो माशाल्लाह हर पास थी नहीं पाई है जी।
3: بڑا راضی تھے اللہ پاک اللہ فضل کو بڑا رگ لا دیتے.
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی خبر ہے, یعنی کہ نقصان والا نقصان والی بارش نہیں ہے.
3: تو سنا بھی کمپنی دا حال ٹھیک نہ جی کہ
0: کمپنی ساری 120 سپیڈ جی میں انشاءاللہ الحمدللہ تواڈے دوئیاں نال تواڈی محبت نال
3: اللہ بھلا کرے تیرے تیرے کال آ رہے نا وہ تیرے رل سنگا تاں تے کرے
0: نا. ہاں بالکل جی کمپنی لا کیسن دے لسنر تے تاں نے بھی کمپنی کہندے نو تے چل دے ہونن تے تساں سارا
3: شے دا معیار ہوندا تا کامیابی کا بھی بھی ہے یار اے تا کامیابی ہے.
0: ہائے ہائے ہائے کتنے عرصے کو چاچا 4-5 سالاں کو سن دے پے وے کیسن کو
3: جی
0: میں کہ 4-5 سالاں کو تو سارا پروگرام سن دے ودے نا کیسن دا الحمدللہ ریزلٹ بار بار گند ہے ایک دفعہ تو سارے آخ گندے پہ طاقت والا فارمولا طاقت پلس فارمولا چاچا تارے واسطے بہت ضروری ہے یقین کرو چا ایک ڈبی استعمال کرے سو تارے جسم جان آوے سی یار
3: اگے بھائی ایسا زمائے اس کام کو اللہ خیر کرے اللہ خیر تے متھے لاوے میرے نا راجا کپور تھوڑا بالکل سلام تھی گیا
0: ٹھیک ہے جی
3: سمینا پنجاب کے گھر کے سمینا کو سلام تھی گیا
0: پنجاب
3: کے باقی سواروں کو تے دوجا کے ہے نا انہوں نے شیر کو سلام تھی گیا حاجی امیر کو
0: حاجی امیر کو
4: بھی سلام لولی
3: تو حاجی امیر بھی واقعہ
0: ٹھیک ہے جی بہت شکریہ.

0: जी जनाब, अब ये ट्रैक जो है ना जुल्फ और रुखसार की कहानी, मैं भाई इसे कहूंगा कि भाई इसको चेंज करें आप। ये जुल्फ और रुखसार, जुल्फ तो कहते हैं बालों को, रुखसार कहते हैं चेहरे को, गालों को कहते हैं रुखसार, और जुल्फ कहते हैं बालों को। तो सेहत, ये कंपनी तो तीन चीजों की कहानी है, सेहत की कहानी है, शिफा की कहानी है, जुल्फ की कहानी है, रुखसार की कहानी है। हैं जी, क्या क्या बोलेंगे इस कंपनी के हवाले से। एंड जिस जितने इस कंपनी के लोग प्यारे हैं, उतने इस कंपनी के प्रोडक्ट प्यारे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: जी, कौन है हमारे साथ, कौन है हमारे साथ?
1: मोहम्मद अली खान का।
0: मोहम्मद अली
1: जी? जी मोहम्मद।
0: अच्छा जी, माशाल्लाह, मोहम्मद अली टांग से हमारे साथ।
1: कुछ भी है
0: क्या चीज भाई?
1: वो पक्की पक्की पक्की नहीं है।
0: तो क्या आपको उसका इफेक्ट मिला? आपको नहीं आ रहा उससे, मजा नहीं मिल रहा? ये बात, ये बात बिल्कुल होगी, ये उस वक्त होगा। आप इस पक्की को छोड़कर देखे ना, मेरी बात सुनिएगा अली भाई, ठीक है? आप इस पक्की को आज वजन करें और इस पक्की को छोड़ दें और एक महीने बाद वजन करें, आपका चार से पांच किलो वजन ज्यादा होगा। मेरी बात सुने, आप इसको समझने की कोशिश करें। अब ये जो है ना, मेरी बात सुने ना, इसके दो मैकेनिज्म होते हैं। एक ये है कि आपका वजन का ना बढ़ना, भाई मेरी बात सुनेंगे थोड़ी सी, फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, एक इस तरह होता है कि वजन का ना बढ़ना, रुक जाना, ये भी फक्की का कमाल है कि उसने आपका वजन बढ़ना रोक दिया है, ठीक है। दूसरा, वजन का कम होना, ये उससे और बढ़िया कमाल होता है कि उसने आपका वजन भी कम किया। लेकिन बात सुने मेरी ना, बात सुने, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई 5-6 कार्टन मंगा चुका है, इतने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें आपने मुझे, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आप खाएंगे तो इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज भी शुरू करें और थोड़ी सी आपकी जो खुराक, पहले की खुराक है ना, उसको थोड़ा सा कम भी करें, ठीक है। मेरी बात सुन, अगर आप डेली की 4 रोटियां खा रहे हैं तो कम से कम 3 कर लें, ठीक है। और 20 मिनट की वॉक भी शुरू करें। एक इस तरीके से आप करेंगे तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि एक महीने के अंदर आपका वजन भी कम होगा, आपका पेट भी अंदर जाएगा, ठीक है भाई। और इसको आप किस तरीके से खा रहे हैं, पहले ये बताएं, तरीकाकार क्या है इसका, इसका क्या तरीकाकार है? ओके जनाब, भाई चले गए। तो भाई बता रहे थे कि मैंने 2 डब्बियां खा ली। तो भाई ऐसा बिल्कुल होता है कि जब आप ये खा लें तो आपका वजन रुक जाता है, यानी कि बढ़ता नहीं है। ऐसे जिस बंदे का वजन बढ़ रहा है ना, हर महीने उसका वजन बढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, जब वो फक्की इस्तेमाल करते हैं तो उनका वजन रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन उसके साथ जब आप ऐसा करेंगे कि थोड़ी सी डाइट को कंट्रोल करेंगे और साथ में थोड़ी सी 10 से 15 मिनट की वॉक करेंगे, 100% आपका 5-7 किलो महीने का कम होगा। एक कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। जी नाम, कौन है जी हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना? बबू खेल, इलाका है कोई?
1: बाबा खेल
0: बाबा खेल, किस साइड पर
1: रहता है? चांग के साथ एक छोटा गांव है।
0: अच्छा जी, ये कुलाची की तरफ हो जाता है या जंडोले की तरफ या पेजू की तरफ?
1: जंडोला
0: मंजई, बिल्कुल है, मंजई का किला भी है वहाँ पर,
1: मंजई के पहाड़ के नीचे है।
0: अच्छा जी, वहाँ तक आवाज जा रही होती है टांक एफएम की?
1: बिल्कुल
0: आ रहा है। तो आपके इलाके में ये प्रोडक्ट मिलते हैं सारे, केसन वगैरह के? अच्छा जी, भाई चले गए हैं, ये मंजई के इलाके से हैं और इन इलाकों को मैं बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ। पहले जब ये गुमलजाम डैम नहीं बना था तो ये मकीन का इलाका और यहाँ से वाना के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती थी यहाँ से चलती थी, और अभी तो ये गुमलजाम का बन गया। अच्छा, जो अली भाई थे जो इसके हवाले से बात कर रहे थे, आज मेरे ख्याल में कि टांग के अंदर हमारा तीसरा या चौथा कार्टन गया इस फक्की का, इसकी इतनी रिपीट है, लोग इसको इतना खरीद रहे हैं। लेकिन कब आपको फायदा होता है? जब आप इसके साथ, क्योंकि ये जो मोटापा है ना, ये एक बीमारी है। अब एक डॉक्टर आपके पास आप जाते हैं और डॉक्टर आपको बताता है कि भाई आपको शुगर है, ठीक है जनाब, और वो साथ आपको कहता है कि भाई ये दवाई शुगर की ले लो, वो दवाई तो शुगर की है लेकिन आपको साथ में वो परहेज भी बता रहा है कि भाई मीठी चीजें नहीं खानी आपने, आप मीठी चीजें भी खाएं और वो गोली भी खाएं, आपके ऊपर टक्का असर नहीं करेगी, आपकी शुगर वैसे की वैसे रहेगी। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर वो आपने कैसी मुझे दवाई लीक कर दी है शुगर की, मेरी तो शुगर कम नहीं हो रही, तो वो बोलेगा कि भाई परहेज कर रहे हो, आप बोलोगे नहीं मैं परहेज तो नहीं कर रहा हूं। तो इलाज जो होता है ना, किसी भी बीमारी का इलाज है वो परहेज के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है जनाब। जब तक आप, ये मोटापा बीमारी है और इसके लिए जब तक आप प्रोडक्ट के साथ परहेज नहीं करते हैं आपको वैसा फायदा नहीं होता। जैसे कि ये बता रहा हूँ, अब जिस बंदे का वजन बढ़ रहा होता है हर महीने 3-4 किलो उसका वजन बढ़ रहा होता है, लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, जब वो फक्की शुरू करते हैं तो उनका वजन रुक जाता है। इसका मतलब है कि फक्की अपना काम कर रही है भाई, वो जो 4-5 किलो आपका वजन इस महीने बढ़ना था ना, वो इस फक्की ने रोक दिया, नहीं बढ़ रहा। लेकिन अभी आपने इसको मजीद सपोर्ट करने के लिए क्या करना है कि आपने थोड़ी सी अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, आपने थोड़ी सी अपनी वर्जिश करनी है, तो फिर आपको हर महीने जो है 6-7 किलो बिल्कुल गारंटी के साथ। हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोडक्ट हमारी ऐसी प्रोडक्ट है वेट कम पेट कम कि हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह इसके इतने रिपीट हैं, अभी तक ये 7 माह हो गए हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, और जहां जहां ये गई है हर महीने वहां से ऑर्डर आते हैं, हर महीने रिपीट ऑर्डर आता है। जैसे टांग के अंदर आप जरबत खान के पास जाके पता करें, उसे पूछें कि भाई ये फक्की कैसे चल रही है, तो वो आपको बोलेगा कि यार वाकई इसकी तो बहुत ज्यादा है। तो भाई तब आपको रिजल्ट मिलेंगे वजन कम करने के लिए, कब मिलेंगे भाई? या डेरा इस्माइल खान में एक डॉक्टर साहब है, उनका वीडियो एड चल रहा होता है वजन कम करने के हवाले से ना, तो वो कहते हैं कि 2 महीने के अंदर जो है 15 किलो वजन कम होगा। वो जो साथ में बता रहे होते हैं ना कि 15,000 रुपए आपका एक लगे, यानी कि वो 25,000 रुपए लेकर सिर्फ 15 किलो वजन का दावा करते हैं, यानी कि मैं 25,000 रुपए लूंगा इतने ये होगा और 15 किलो वजन कम होगा। और भाई आपने तो सिर्फ 2 डबियां खाई 800 रुपए की, ठीक है। और उनसे पूछें जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर पैसे लेकर इतना वजन कम करते हैं, हम कहते हैं कि अगर आप परहेज के साथ और वॉक के साथ जो है अगर आप इस फक्की को इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी तौर पर जैसे आपका वजन नहीं बढ़ रहा ना, कम भी ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा आपने इस फार्मूले को सपोर्ट करना है। और ये हर किसी के अंदर नहीं होता ऐसा, कुछ लोग परहेज नहीं भी करते, कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे उनका वजन कम हो रहा होता है, लेकिन जनाब लेकिन कुछ लोग जिनकी डाइट बहुत हैवी होती है, यानी कि आप लड़मून को नहीं छोड़ रहे हो, आप नमकीन गोश्त को नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है जनाब, आप जो है काबली पुलाव को नहीं छोड़ रहे हो, आप ओझरी को नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर भाई दवाई का कसूर नहीं होता कि अब आपका वजन कम ना करे, डाइट को जरूर कंट्रोल करें। जी जनाब, केसन के अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ की जितनी भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि शिफाए दर्द हमारा प्रोडक्ट आप लोगों के पास मौजूद है, एक अमेजिंग फार्मूला हमने आपको प्रोवाइड किया है, और इस फार्मूले की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमने आपको शुतुरमुर्ग के तेल से बना हुआ ये फार्मूला ऑयल दिया है, जो कि पुराने से पुराने जोड़ों का खात्मा करने के लिए बहुत ही मुफीद है। आपके शायद टांग के अंदर ये भी मौजूद है, और स्पेशली आजकल हम जो बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ वो है जनाब केसन के नई प्रोडक्ट जिसका नाम है केसन ताकत प्लस, ठीक है जनाब, केसन ताकत प्लस और एनर्जी बूस्टर है, ये आपके जिस्म के अंदर एनर्जी पैदा करने वाला और जान डालने वाली ये प्रोडक्ट है। आप लोग मैसेज कर रहे हैं, हमारा नंबर 03443633 0344-936-3363, 03449-336-3363। अदनान भाई हमें सुन रहे हैं, कहाँ से? अवान वाले नाला से सुन रहे हैं, अवान का जो इलाका है वहां पर। कहते हैं खलील भाई सबको मेरी तरफ से इस्लाम, और केसन का ताकत प्लस जो है इसकी कीमत क्या है? तो इनिशियली हमने इसका छोटा पैक लॉन्च किया है 500 रुपए का, ठीक है, लेकिन चूंकि इसकी खुराक जो है वो जिस्म को मुकम्मल तौर पर भरने के लिए और जिस्म को सेहतमंद बनाने के लिए वो ऑलमोस्ट जो है वो 3 माह है, तो इसके लिए हम बड़ा पैक भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसमें हम आपको बचत भी दे सकें, और आपको एक ही दफा या 3 माह में सिर्फ 2 दफा खरीदना पड़ेगा। सलाम डियर खलील भाई, सलाम टू ऑल लिसनर्स, एमबी साहब, शिराज भाई, शबीर भाई, राजा गफूर, शाहजहां, मेंबर नूना सेठ हैं जी, इतने सारे लोगों को सलाम भेजा है। टांक वाले फैजान को कहते हैं कि स्पेशल सलाम, प्लीज लाला केसन हेयर कलर लॉन्च करें। बहुत जल्द जो मतलब नजर हसन फ्राम कच्ची काट गया। ये बहुत बड़ी हमारे पास रिक्वेस्ट है लोगों की केसन हेयर कलर, तो वो भी इंशाल्लाह डोंट वरी जी इंशाल्लाह किसी न किसी दिन वो भी आपको आ जाएगा जरूर। आप लोग जो भी हमसे फरमाइश करते हैं हम उसको जरूर पूरा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, आप लोगों को दुकानों का एड्रेस बताना बहुत जरूरी होता है। टांग के अंदर जनाब, टांग वालों के फिर से नोट कर लो, अरबाब के पास चले जाओ, अरबाब कॉस्मेटिक स्टोर, इमरान कॉस्मेटिक स्टोर, फैसल गिफ्ट सेंटर, दुबई जनरल स्टोर, अब्दुल्ला जनरल स्टोर, सिटी जनरल स्टोर एंड मंसूर जनरल स्टोर सदर प्लाजा के अंदर मौजूद है जनाब। ये सेटअप हमारा मंसूर जनरल स्टोर के नाम से, जहां पर किसन के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और दुकानदार हजरात जो घरों के अंदर खवातीन प्रोडक्ट बेचती हैं बहुत ज्यादा, वो भी यहां से हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, हमारी प्रोडक्ट आप हमारी आवाज सुन रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं और आपका पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमारा नंबर जो है इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा 0344-936-3366। जी जनाब, एक दफा फिर से 03-44-936-3366 के ऊपर आप लोग SMS कॉल कर सकते हैं। डेर इस्माइल खान के अंदर भाई आप लोग ब्लेसिंग पीपल हैं, आप लोगों को केसन के प्रोडक्ट सबसे सस्ते जो मिलते हैं ना वो केसन शॉप के ऊपर मिलते हैं। केसन शॉप अकबर प्लाजा में है और इंशाल्लाह अगले माह से एक दफा फिर से हम आप लोगों के लिए कूपन सिस्टम को एक्टिव करने वाले हैं। जिस तरह पहले कूपन सिस्टम हमारा होता था, एक दफा फिर से कूपन सिस्टम एक्टिव करेंगे और उसमें हर महीने जो होते हैं जो इनामात होते हैं हमारी तरफ से, एक प्रोडक्ट के ऊपर एक कूपन देते हैं और फिर हर महीने के एंड के ऊपर हम उसकी कुरंदाजी कर रहे होते हैं। तो वो इंशाल्लाह प्रॉपर सिस्टम बीच में थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन इंशाल्लाह अगस्त के महीने से एक दफा फिर से हम उसको शुरू करेंगे आप लोगों के लिए। और एक कॉलर है हमारे साथ, उन्हें मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना?
2: जी मैं ज़ारा खान बोल रही हूँ, डीआई खान से।
0: जी जी ज़ारा, ग्लोबल एफएम 91 को सुन रही हैं आप ज़ारा?
2: जी जी।
0: अच्छा जी, पहले से प्रोग्राम सुनते आ रही है या आज पहली दफा सुने आपने?
2: जी नहीं, पहले तो सुनते थे, तो फिर वो 91 का जो नंबर था ना पहले वाला, वहाँ पे कॉल कर रहे थे तो अटेंड नहीं हो रही थी ना, तो अभी आपने नंबर बताया तो अभी की है।
0: हाँ बिल्कुल, ये हमारा पर्सनल नंबर है क्योंकि ये ग्लोबल एफएम 91 से प्रोग्राम नहीं किया जाता ना, ये केसन स्टूडियो से नशर किया जाता है, फिर सारे एफएम के ऊपर जा रहा होता है, तो हमारा अपना नंबर होता है। तो क्या कहेंगे, केसन को जानती हैं आप, इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं ज़ारा ने या अभी तक सिर्फ सुन रही हैं प्रोग्राम?
2: जी नहीं, सुन रही हूँ, लेकिन बहुत बार आपकी नंबर मिलाने की कोशिश की तो नहीं हुआ, तो वो मेरी दादी है ना, वो ना तेल ऑयल का पूछ रही थी कि इसकी प्राइस कितनी है केसन की।
0: जी, केसन का जो हमारा पेन किलर ऑयल है उसकी कीमत है 700 रुपए, ठीक है जी। 700 का आपको मिलेगा केसन शॉप पर। आप डेरा में रहती हैं तो डायरेक्ट वहां पर आ जाएं, अकबर प्लाजा में हमारी शॉप है, वहां से आपको कंसेशन हो जाती है काफी सारी, लेकिन वैसे अगर आप कहीं से भी लेंगी, आप कौन से इलाके, कौन इलाका कौन सा आपका हो जाता है, मैं आपको एग्जैक्ट सेल पॉइंट भी बता देता हूँ, वहाँ से मिलेगा आपको।
2: कोटली इमाम हुसैन नहीं है?
0: कोटली इमाम हुसैन, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ चुंगी के साथ यहाँ पर कराची कॉस्मेटिक एक दुकान है, कराची कॉस्मेटिक्स।
2: जी जी,
0: ठीक है ना, तो वहाँ पर इंशाल्लाह आपको इजिली ये हमारे सारे प्रोडक्ट जितने भी है ना, ठीक है जनाब, चाहे ये ताकत प्लस फार्मूला है, शिफाय दर्द है, फक्की है, हाजमा कंट्रोल सिरप है, या ब्यूटी के जितने प्रोडक्ट है सारे आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है जी।
2: जी ओके, थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम जी। रज़ारा हमारे साथ थी डेर इस्माइल खान से और 91 को सुन रही हैं। और दादियों नानियों के लिए भाई ये जो प्रोडक्ट है हमारी बहुत कमाल की प्रोडक्ट है और दुआएं दिलवाने वाली ये प्रोडक्ट है। आप यकीन कीजिए कि पट्ठों का खिंचाव जो होता है ना वो यकदम से आपका जिस्म नर्म पड़ जाता है, और जैसे पट्ठों का खिंचाव खत्म करता है ना ये ऑयल, बेसिकली नेचुरली इसके अंदर जो है सोजिश को खत्म करने और दर्द से आराम देने वाले और पट्ठों के अंदर जान डालने वाले। तो मैं पहले तो ये कहूंगा कि ऑयल मौजूद है हमारा, अपनी नानी को ताकत प्लस भी ऐड करवाएं, हर रोज जो है उनको दूध आप वैसे भी देते होंगे बुजुर्ग हैं, आधे कप आधे गिलास के अंदर जो है आप दो चम्मच एक चम्मच ताकत प्लस का भी ऐड करके दें, सोने के ऊपर सुहागा होगा, बैरूनी तौर पर ऑयल काम करेगा और अंदरूनी तौर के ऊपर जो है ताकत मिलेगी, ताकत प्लस से। जी अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम खलील भाई।
0: जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना?
3: बुटकुल गुलाम मोहम्मद, कह रहा सुन रहे बैठे सर।
0: बुटकुल सुन रहे बैठे हुए, बुटकुल اچھا جی پہاڑ کیڑا ایف ایم ٹانگ والا ایف ایم سن دے پیا اس سے لوکیشن ایسے ہی تھا ہی کلونی ہونی چاہیے لسنر کلونی ہونی چاہیے کہ چار ایف ایم آنے نہیں تھے کٹے ہاں جی چار ایف ایم آنے نہیں تھے سارے پروگرام کو سن دے تو کی لگتا ہے کہ کیری شے تہاڈے کم دی ہے یا ایویں بس گالیاں صرف مزہ کرن دین سارے پتا لگ جائے کم دشیا ہی سارے واسطے اچھا چلو وت ریڈو نا پیار محبت کریں ضرور گل ہر کمپنی بارے پتا ہو سی ہر کمپنی اپنا پروگرام انداز اپنے انداز گن کے آدھی ہر کمپنی انداز کیسن کی میں لگتی ہے صرف میں کوئی دسو بہت سارے کمپنیاں دے پروگرام چل دے ہیں سارے پروگرام کو بعد وچ کتنے نمبر دے سو مختلف کمپنیاں دے تسا پروگرام سن دے پے ہوندے
3: اچھے پروگرام ہیں تے سارے نہیں صحیح ہیں بڑے مزے بڑے صحیح ہیں سب تو بہت بیماری ہے صاحب
0: اچھا بہت سارے بیمار ہیں بہت سارے بیمار ہیں میں کو تسا داد وچ نمبر دے پہلے دسو کتنے نمبر دے سو سا کو چلو ٹھیک ہے گرنی چاہیے شیمپو تو سر وقت سارے کو پورا نہیں تھا من سو تسا ہوں بھی ساقو جہی جہی لوگ نے تر تر ڈوڈو کاٹن کا آرڈر دیتے سن کو ایک ہی کاٹن دیتا سے سارے کو شیمپو کی پروڈکشن اتنی گھٹ ہے کہ گننے والے زیادہ تھی گئے گننے والے سر تو ڈاڈے تھی گئے تو اصا کمزور تھی گئے بالکل بہت شکریہ جناب آپ کے پاس بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شیمپو بہت کمال کا ہے اور یقین کیجیے شیمپو شیمپو کے تو کیا ہی کہنے ہیں کیسن کا شیمپو اس وقت کیسن کا سب سے زیادہ بکنے والا پروڈکٹ ہے سب سے زیادہ کماؤ پتر جو کیسن کا ہے نا وہ کیسن شیمپو ہے یہ سب سے زیادہ کما کے وہ کہتے ہیں نا وہ بیٹا سب سے پیارا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ کماتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ میرا یہ جو بیٹا ہے نا شیمپو کیسن شیمپو یہ میرا کماؤ پتر بنے کماؤ پتر تو بہت سارے راجا غفور بھی ہمارا کماؤ پتر ہے السلام علیکم کما کے دینا پیسے بھی جانے میں ہر ویلے پیسہ کہ مطلب 20,000 تے کہ مطلب 15,000 تے کہ مطلب 10,000 تے کماؤ پتر تھا تسا بھی سارے نا سائیں بالکل حالے تک تو صحیح کام تھی شاید تو پہنچی نہیں طاقت پلس فارمولا کیسن دا ناصر بھائی کو انشاءاللہ طاقتور 3 مہینے دے وچ اساں کو فوٹو چکے سوں پہلے ٹھیک ہے سہی تساں کو فوٹو لے کے دے کتیاں لگ دیا پے کتیاں اچھا کشتیاں اللہ تعالیٰ میں کتیاں کا ٹھیک ہے کشتیاں کشتیاں بس یہ یقین کرو پہلوان لوگ جڑے نا پہلوان لوگ جڑے جم کرے نے ٹھیک ہے جی نا جنہاں کو باڈی بناون دا شوق ہوندا ہے او کو آکھو کہ بھئی گھن مائن تے استعمال کر تے بعد اپنے ڈولے بن دے دیکھ کینے بن دے ڈولے میں کہ صحیح ہے ڈولے بناون والی شے ہے تہاڈے پٹھے بناون والی شے ہے ڈولے جگہ دے چنگا بھی ان شاء اللہ موٹے تھی سن طاقت کیسن طاقت فارمولا جلے ان شاء اللہ دودھ شامل کر کے پی سن جی
3: نمبر
0: اچھا ٹھیک کہہ دے میں انہوں کو پوچھتا پیا کہ اتنے سارے کمپنیاں دے پروگرام سن دے سارے پروگرام کو ڈاہ چو کتنے نمبر دے سو وہ آدھے نہیں ہو نمبر ہے جڑے چل رہا اچھا چلو ٹھیک ہے بس یعنی کہ ڈاہ بٹا ڈاہ نمبر ان کیسن کمپنی دے ہیں جی हमने रट्टा लगाया हुआ है आजकल, दूसरा तीसरा दिन है। और मैं उन लोगों से कहूंगा भाई, जो लोग बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र 50, 55, 60, 70 से ऊपर है, ये दो प्रोडक्ट उनके लिए है, ठीक है जनाब। एक तो ताकत प्लस और दूसरा केसन शिफाए दर्द, ये दोनों जान आ जाएगी, यकीन कीजिए। मैं आपको कहता हूं कि पहले 5 दिन के अंदर ही ये ताकत प्लस फार्मूला इस्तेमाल करने से जान आने की हम गारंटी आपको देते हैं। और केस से हमारे साथ शबीर उस्ताद है, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या
0: हाल है? सही है, तुसा ठीक ठाक है? वे चंगे वदे वे माशाल्लाह,
4: अल्लाह दी मेहरबानी। आज का नंबर कुछ भी बैठे आए तो सारा गुलाम लिखनर सारे अहम
0: बैठे। अच्छा माशाल्लाह, मेरे प्रोग्राम में पहली दफा आए तो मैं इनको वेलकम सही ना कर सका, वा अगली दफा फुलां दे हार मंगवे सु जले घंटी करे सन सारे उता पतियां भी
4: सिंपल बंदे सारे कोई से आंदा रहंदा ते नहीं कोआ काल में दे खलील जोर के प्रोग्राम में लेके आनी थी इसी जरूर मैं के शिरकत करें ता जो इंशाल्लाह शिरकत करे।
0: माशाल्लाह दावत है वदन दावत है
4: जोड़े के तौर तक मेहरबानी करे ये पर हमारे बड़ी सहूलियात बीमार थी अलहमदुल्ला हमारे बड़ा सकून बन गए।
0: मानसून ने ठंडा कर देते मौसम को ते खुशगवार मौसम, खुशगवार मूड ते खुवत कम ही हुए तेजी नल थी ना जी मौसम चंगा थी वजह
4: जी तो कैसन का प्रोग्राम हुए थे टी लाल चाय
0: मजा आवे ना मत माहौल चाह तो पता है चाह तो माहौल बने दी है ऐसे
4: बिल्कुल बिल्कुल तो बाकी तेरा माशाल्लाह अपना किरदार है अपना अखलाक है जिन वजह को लोग ज्यादा चाहिए
0: इंसान की पहली तरजीह होने चाहिए, ठीक है जी। बार बाद मामला बाद बहुत मेहरबानी सी तुम्हारी मोहब्बत
4: खास कर शुक्रिया अदा कर रहे हैं बहुत सारे लोग कमजोर ज्ञान आ गए मोटापे लेकिन कमजोर लाकर बहुत लोग ताकत प्लस जो रहे इन जिन्हे सारे लोगों को मैं आता इन अगे कोई प्राइवेट जिले घर के फायदा मिले थोड़े प्राइज प्राइस कौन है तो इन बिना लोगों को अवेयरनेस दे ताकि जो वेट कम पेट कम सफाई दर्द जो रहे हाजमा कंट्रोल बाकी जितने प्रोडक्ट भी माशाला तकरीबन 28 दे चढ़ गया चुका इनशाला इन्होंने पालन करो खलील भाई थोड़े वक्त
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जनाब। और ढेर सारी प्रोडक्ट बनाने का मकसद आप लोगों की मोहब्बत है हमारे साथ और दिन ब दिन ये कंपनी आगे बढ़ रही है माशाल्लाह। अजर कहते हैं शैम्पू कितने का है भाई, शैम्पू मिल नहीं रहा और तुम कहते हो शैम्पू कितने का है। इतने खरीदने वाले बन गए हैं कि भैया केसन शैम्पू लोगों को बहुत कम मिलता है और आप अभी कीमत पता करें 390 रुपए का हमारा शैम्पू है जी। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, मैं जारा खान बोल रही हूँ कि आपने जो बताया कराची कॉस्मेटिक्स वाला उनका नंबर है आपके पास?
0: चलो शो के बाद आपको सेंड कर देंगे, ठीक है जी। ओके जी, जारा को बिल्कुल जी नंबर सेंड करेंगे। कौन बैठा है भाई, जारा को इस नंबर के ऊपर जरूर सेंड करें कराची।

0: टाक से मैं मिशन हूँ. अच्छा है, अच्छा मिनशा हूँ या क्या लिखा हुआ है?
1: जिंदगी
0: लिखा हुआ है बारह. एनी हाउ जनाब, ये था हमारा आपका आज का प्रोग्राम. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. पहाड़पुर में भाई, अच्छा ये आखिर में कॉल्स करते हैं, टाइम नहीं होता हमारे पास. पहाड़पुर के अंदर हमारा ये ताकत प्लस फार्मूला जो है पहुंच चुका है अवेस जनरल स्टोर, जनरल पोस्ट ऑफिस के सामने बिल्कुल. इसके अलावा हैदर मेडिकल स्टोर के पास और जमील नियाजी के पास, उसके साथ हसीफ जनरल स्टोर है. तो जनाब इन दुकानों के ऊपर जाइए और ताकत का खजाना लूट कर लाइए सिर्फ 500 रुपए.
2: It's 5 o'clock.
3: It's 5 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: Radio Aman.

उम्मीद है जिथे जिथे मेरी आवाज बहनी पी सी खुशियां उथे घर की पसन सोहनी दीवार जुम्मतुल मुबारक। उम्मीद है कि कम कार अपने खत्म करके जे रहे तुसा रेडियो दे बिल्कुल नजदीक जुड़ गए सो। पता नहीं केरियां दुआई चाहिए वदी आई पता नहीं केड़िया दुआई चई वदी आई रात मेरे ख्वाब च मां आई वदी आई अंधे जई सीख हिक गलियां च रुल के हाय जमशेदा जमशेदा लई वदी आई। सोनी दीवार जुम्मतुल मुबारक 18 सितंबर 2026 असू दी है अज त्रै तारीख। उम्मीद है कि जिथा जिथा मेरी आवाज बहनी पी सी खुशियां थी घर की पेसन कोई बहत था उसी अपने दोस्त अपने यार अपने घर दे अंदर कोई छप्पर दे अंदर कोई बैर जमीन ते कोई फतक की कण ते लड़का के ते सराय की प्रोग्राम वसदे लोग अशरफ जोशी दे नाल जुड़ गयो सी। सराकी प्रोग्राम अस दे लोग अमन रेडियो 88.4 दे स्टूडियो कुल तुआरे पास तुआरे किते बिल्कुल बराह रास्त नशर की तवेना भी है। इस प्रोग्राम को तुआरे वास्ते तरतीब दे जनाब प्रोड्यूसर नाजमान खटक साहब जेरा कोई टांग दे अंदर दाखिल थी ना भी है वेलकम वेलकम सत बिस्मिल्ला लख बिस्मिल्ला सजना मिनते अखियां ठरन वेलकम आदे हैं तुआ को अपने अपना टांग दे अंदर जेरा कोई वेंदा पिए बैर सफर दे जे कोई सफर इख्तियार कीते डेरा इस्माइल खान को हाट रावल पिंडी कुलाची बखरिया वाल पेजुदा इस्लामाबाद लाहौर दाता सारी यमन रेडियो 88.4 दी टीम दी पूरी दुआ है अशरफ जोशी सराय की प्रोग्राम मस्त दे लोग दे मेजबान दी दुआ है कि अल्लाह पाक तुहाडे सफर को आसान बनावे अल्लाह पाक ये सफर तुहाडे वास्ते रहमत दा जरिया बनावे। सफर इतवाने वास्ते आसानियां पैदा फरमावे राबते वास्ते सारा नंबर तुसा याद रखे सो 09638511488 दे उते आके सारे नाल तुसा मुहब्बता वंडे सो। ਜ਼ੀਰੋ 9638511488 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਵੰਡੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਜੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਨਾ

0: वेलकम बैक जी। एक दफा वलासरा की प्रोग्राम वसदे लोकिच सत बिस्मिल्ला ते लाख बिस्मिल्ला। सराकी प्रोग्राम वसदे लोक अपने भिरा अपने दोस्त अपने भिरा अशरफ जोशी दे नाल सुनदे पवे 09635114488। अस्सलाम वालेकुम।
1: शुक्र
0: अलहमदुल्ला। तबीयत सेहत अच्छी है?

0: ॾाढी फर फर लॻे हवा ते चोला चिकने था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो
0: जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: वेलकम साईं, कौन साहब ते केर जात थारे नाल? हेलो,

0: इससे इनकी नाक से बाद का पानी आना या खारिश होना और उसमें एक किस्म की जलन सी भी महसूस होना।
1: अच्छा, ये भी एक एलर्जी की किस्म
0: है? एलर्जी है, ये एलर्जी है, इसके लिए इसका प्रॉपर इलाज है और थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना होता है, इतना लंबा इसका इलाज नहीं होता। तो उससे ये होता है कि आप फिर किसी भी लिहाज से मौसम जैसा भी हो
1: बात है,
0: तो उसमें यह है कि आपको कम से कम ये एलर्जी का सामना नहीं करना पड़ता।
1: ठीक है,
0: ठीक है ना, इसके लिए बेहतर है कि दवा खाना पड़े। आप कुछ टाइम निकाल के जरा मिल ले, मशवरा करना है, आप मशवरा दवाखाने पे भी आके कर सकते हैं।
1: ठीक है,
0: उससे यह है कि मरीज सामने होता है तो जरा उसको प्रॉपरली और मुकम्मल जवाब भी दिया जा सकता है।
1: ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। हेलो,
2: हकीम साहब से पूछना है।
1: हाँ जी,
2: हमारे 65 साल उम्र है और तकरीबन 50 किलो या 55 किलो मेरा वजन है।
1: ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं
1: टांग गरशाबाद से बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी 50 साल उम्र है से ऊपर है और 55-60 किलो वजन है आपका?
2: जी हाँ, और हम जब 5 किलो वजन उठाते हैं ना, 5 किलो वजन भी हमने उठा सकते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो आखिर में है ना, ये दर्द करती है।
1: ये दर्द करती है, ठीक है जी। आप रेडियो सुन रहे हैं?
2: उठाने या मतलब 5 किलो 4 किलो वजन उठा लो तो फिर ये दर्द करती है।
1: ठीक है हाजी साहब, रेडियो सुनते रहे आप, हकीम साहब से मशवरा लेते हैं इसके बारे में। जी हकीम साहब, हाजी साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
0: हाजी साहब को पहला मशवरा तो यह है कि जाहिर है उम्र तो इतनी कह भी नहीं सकते कि इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ज्यादा है,
1: 50 साल से आप है तो फिर तो
0: हाफ सेंचुरी तो हो गई,
1: जाहिर सी बात है।
0: दूसरा यह है कि अगर असाब या पट्टे मजबूत हों तो फिर इतनी उम्र जो है वो ऐसा ही है जैसे 31-40 साल का दौड़े भागे,
1: ऐसी बात है बिल्कुल। हाँ जी,
0: तो बाकी हाजी साहब का जो मसला है वो थोड़ा सा ऐसा है कि अगर हाजी साहब बजाते खुद मिल लें तो इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो बंदा बैठ के और उनकी नबज वगैरह और उनसे केसेस भी लेके,
1: ऐसी बात है।
0: तो बहरहाल ये जरूर है कि इंशाल्लाह ताला इन्हें बेहतरी महसूस होगी, लेकिन उससे पहले यह है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के मिल लें।
1: इमें गाल है जी, बिल्कुल जनाब जी, हाजी साहब ने सबको गरज शबाज से सुन दो बयान। बिल्कुल जनाब, जो भाई हमें गरज शबाज से सुन रहे थे, तो आप प्यारे भाई ऐसा करें कि आप तशरीफ लाएं टांग सिटी मेन ट्रैफिक चौक के साथ शवाल मार्केट में अलशिफा दवाखाना में। इंशाल्लाह अलशिफा दवाखाना सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुला रहता है और आपको जो मसला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका मुकम्मल तौर पर इलाज मौजूद है और आप सेहतियाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से मेरे भाई? जी लला उमर की में हाल ठीक ठाक वे तबीयत से ठीक है पी तुरी अल्लाह का शुक्र है जी। हकीम से बड़े बिल्कुल ठीक है हिंद पे जी, कोई सवाल है भी सेहत के हवाले नाल तुहाडा? ठीक है, हफ्ते छह की बार पौंद है तो किवें शदीद दर्द होंगे है, कितने टाइम वास्ते होंगे पी है? चलो ठीक है जी, रेडियो सुनते रहो जी, बेहतर तो यह हो सी तुरा जरा बच्चा है चदर टांग को लेडा परे नहीं जी, तुम कोशिश करो हकीम साहब ने दवाखाने ते गिनाणो इना को। ठीक है जी, वो मैं तो कुल्ले ही पीना, बेहतर ए है जो इस दा मौके ते इलाज थी वने इवन ना वेगु वांगे कोई मजीद ज्यादा मसला बण वने। ठीक है लाला, ठीक है तो ठीक है, रेडियो तो सुन दे रहे हकीम साहब को मशवरा करे नहीं है कोई तो को टोट कर दे या चलो चलो ठीक है जी, बहुत मेहरबानी जी। हकीम साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
0: देखें, एक तो पहली बात है कि कोशिश करें कि वो जो बच्चा है वो वक्त जैसे छुट्टी आता है क्योंकि डेरे जाहिर है वो डेरे में है, अगर छुट्टी आता है तो उसे

अबहिल मरवत राहत खान नाम वाई जी सलामुन में केबल का हाउ आर यू इनाम खान और इश्मा लकी मरवत एफ एम अटाजी शारी जीरो वानी बिल्कुल ओके जर राहत यम स्टार और दखपल को नडे रजियात अमन खुशहाल हो सी खान अस्सलाम वालेकुम भाई जान संग इज अलीजा अफगान यम दुआगान सलामुन में केबल का अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई जट केज हो वेलकम टू द शो आपको स्पेशल सलाम सब लिसनर को सलाम भाई जान मेरे आपको एक अबू एक चाचा हैं पूपी नहीं है महरीन फ्रॉम टांक माशाल्लाह जुनून दी सादी हां ऐशमा माहीन यमा इनाम जाना आजदी हम शो और मखा टपिया रहता होगा और दिन लावज कम देनो आई लिया भाई सलामुन में केवल आई यमा हाय इनाम भाई लैला खान हाउ आर यू सलाम टू यू एंड हीरा खान वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जैनब अली खान वाई सलामुन में केवल क्या जैनब अली खान इम दखपल कोर नता ते में सलाम दे वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आदि वाई ज आदि यमा आदि यमा आदि यमा खाज आदि यमा आओ वाई छे मुंगा द इश्मा सन ब्लॉक और द इश्मा एंटी एग्नी सोबा